0: सिख से लाशें मुल्क वापस लाई गई हैं जो रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों से ताल्लुक रखती हैं। बयान में मजीद कहा गया, लाशों की वापसी के अमल को सहल बनाने, इसमें ताउन फ्राहम करने पर आर्मी कमेटी प्राइस स्लीब आमिर का तहदीद से शुक्रिया अदा करते हैं। रूस यूक्रेन के दरमियान इस मामले पर आखिरी तबादला 16 जुलाई को हुआ था, जिसमें मास्को ने यूक्रेन को 501 लाशों और कीव ने रूस को 31 लाशें वापस की थी।
1: मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में होने वाले धमाके में 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। न्यू काहिरा इलाके के अराबेला प्लाजा नामी शॉपिंग मॉल के दाखिली मंजिल पर वाक़ तहाइफ और खिलौनों की दुकान में हीलियम गैस के सिलेंडर के फटने से आग भड़क उठी। इस वाक़े में 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए। मिस्री वजारत दाखिला के बयान में कहा गया है कि यह धमाका अराबेला प्लाजा शॉपिंग मॉल में हुआ और वाक़े के बाद सामने लगने वाली कम सतह की आग को शहरी दिफाई दस्तों ने बुझा दिया। बताया गया है कि धमाके के बाइस आसपास की बाज़ दुकानों के शीशे टूट गए। मिस्री अटॉर्नी जनरल का कहना है कि धमाका होने वाली दुकान के मालिक को हिरासत में लेने की हिदायत दी गई है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में धमाका एक गैस सिलेंडर से होने का तायुन हुआ है और वाकई की वजह जानने के लिए माहिर टीमें तैनात कर दी गई हैं।
0: नेपाल के एक अहला अहदेदार ने अनातोलिया एजेंसी को बताया, मुल्क के मरपी सिला रोपला के एक दूर दराज गाँव थवांग में मिट्टी का तोदा गिरने से कई घर बह गए, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। बुध के रोज मकामी वक्त के मुताबिक रात लगभग 8 बजे आने वाली लैंड स्लाइडिंग ने पहाड़ी दरवानों पर कायम 11 घरों और गाय भैंसों के बाड़ों को अपने साथ बहाकर तबाह कर दिया। इमदादी टीमें मुतासर इलाकों तक पहुंचने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। मुसल्ला पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस के बचाव दस्तों ने लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। नेपाल का पसमानदा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अफाद से निपटने के लिए नाकाफी तैयारियां, जून में शुरू होकर सितंबर तक जारी रहने वाले मानसून के मौसम में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का मोचक बनती हैं।
1: मकामी मीडिया ने जुम्मे को इत्तला दी है कि मशरकी जापान में मूसलाधार बारिशें के जिनके नतीजे में शदीद सैलाब, ज़मीन के तौदे गिरने और आमदोरफ्त में वसी पैमाने पर खलल पैदा हुआ, कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए। क्योडो न्यूज़ के मुताबिक टोक्यो गरीब चीबा सूबे के एक तिहाई से जायद बल्दियात के लिए जापान के मौसमियाती इदारे ने बुलंद तरीन दर्जे 5 के साथ मूसलाधार बारिशों का इंतबाह दिया और हुकाम ने रिहायशियों से अपनी हिफाजत के लिए फौरी इकदाम करने की अपील की। चेबा भर में शहरों पर पानी खड़ा होने की रिपोर्टें मौसूल हुई, जिसकी वजह से गाड़ियां फंस गईं और ट्रैफिक जाम हुआ, जबकि कई बल्दियात को लर्जिश अराजी का इंतबाह दिया गया। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक परचीबा और इबारा सूबों में 4 लाख से ज्यादा अफराद के लिए इनखला के अहकाम जारी किए गए। जुम्मे की सुबह तक चीबा में तकरीबन 1,02,600 अफराद अब भी इनखला के अहकाम के तहत हैं। हुकाम ने चीबा में 6 हलाकतों की तस्दीक की, जिनमें वो अफराद शामिल हैं जो सैलाबी रेले की जद में आ गए। ट्रेन और बस सर्विसेज मुतासर होने के बाद तकरीबन 7,000 अफराद नरीता एयरपोर्ट पर रात गुजारने पर मजबूर हुए। चीबा के चुआ वार्डो में जुमेरात की रात 1 घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो कि खत्ते में तकरीबन पूरे अगस्त की औसत बारिश के बराबर है।
0: बतानी साल के गर्म 3 दिनों में आग के शुरू से नबाते आसमान है। दर्जा हरारत 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के साथ मुल्क भर में बिलखसूस वेस्ट मिडलैंड्स के इलाके में यकबाद तिगरे कई मकाम पर होलनाक आग भड़क उठी। स्टोव ब्रिज गोल्फ कोर्स के करीब लगने झाड़ियों की शदीद आग घरों तक फैल गई, जिसके नतीजे में 6 घरों को नुकसान पहुंचा। दूसरे बर्मिंगम के घर में आग लगने से खातून की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। शोलों धुओं के बायस इलाके में ट्रेन की आमदरफ्त रोक दी गई है, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। M6 मोटरवे पर धुएं की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई और ट्रैफिक में 2.5 घंटे तक तखीर रिकॉर्ड की गई। जिन इलाकों से केयर होम्स और रहायशी बस्तियों को खाली कराया गया है, वहां स्टोर ब्रिज टाउन हॉल को बेघर होने शहरों के लिए बनाकाम में तब्दील कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज 40 मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज कर गया था।
1: और चीनी बरकी ट्रकों की दूसरी एशियाई ममालिक को बरामदात में तेजी आ गई है, जो अंदरून मुल्क फरोख्त में इजाफे के साथ मिलकर इस खत्ते की बरकी कारी को तेज कर रही है। इसकी एक वजह अमरीका की ईरान मुखालिफ जंग के नतीजे में ईंधन की कीमतों में इजाफा है। हल्की गाड़ियों से लेकर ट्रैक्टर ट्रेलरों तक चीन की तेज रफ्तार बरकी ट्रकों के रुझान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट को इस तनाज़े के असरात से जुज़वी तौर पर महफूज रखा है। अब दूसरे ममालिक भी तेजी से इसको अपनाने के दर पे हैं। 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران مخالف جنگ شروع کرنے کے 4 ماہ بعد چین کے بڑے برقی ٹرکوں کی برآمدات گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی بڑھ کر 16,823 گاڑیوں تک پہنچ گئی ہے۔ جنوب اور جنوب مشرقی ایشیا، خاص طور پر مشرق وسطی پر

0: इस बाज़ाहर आम से वाकये को असल में फिजिक्स और बसारत के बुनियादी उसूलों के साथ वाज़े किया जा सकता है। तो आइए मिलकर इस मज़हर पर ज़्यादा करीब से निगाह डालते हैं। सबसे पहले तो हमें रोशनी की हरकत के उसूल को जानना होगा। रोशनी एक माहौल से दूसरे माहौल में जाने पर अपनी सिमत को तब्दील कर लेती है। इस अमल को अमले इनआताफ कहा जाता है। रोशनी हवा से पानी में दाखिल होते वक्त सुस्त रफ्तार हो जाती है और सिमत को तब्दील कर लेती है। इस इनआताफ की वजह से पानी भरे गिलास में रखा हुआ कलम टूटा हुआ दिखाई देता है। जब हम पानी भरे गिलास में रखे कलम पर निगाह डालते हैं तो इसका पानी में डूबा हुआ हिस्सा पानी से बाहर वाले हिस्से के साथ एक ही सिमत में दिखाई नहीं देता। इसकी वजह रोशनी का हवा से पानी में दाखिले के वक्त अपने जाविये को तब्दील करना है। रोशनी के जाविये में तब्दीली के नतीजे में हमें कलम का पानी के नीचे का हिस्सा मुख्तलिफ नुक्ते से शुरू होता दिखाई देता है। हमारी आंखें इस अमले इनआताफ का इदराक करती हैं, लेकिन जब इन मालूमात को दिमाग तक पहुंचाती हैं तो दिमाग पानी के इनआताफ इंडेक्स के साथ इन मालूमात की तस्ही नहीं कर पाता। अगर इस वाकये को ज़्यादा तकनीकी ज़ुबान में वाज़े करना ज़रूरी हो तो हम स्नेल कानून का जिक्र कर सकते हैं। स्नेल कानून जाविया इनआताफ और जाविया वकूअ की वजाहत करता है। ये कानून रोशनी की लहरों के एक माहौल से दूसरे माहौल में दाखिले के वक्त जाविये की तब्दीली को रियाजी की जुबान में बयान करता है। समिन इनताफ का मसर सिर्फ कलम के मामले में ही नहीं, रोजमर्रा जिंदगी के दीगर पहलुओं में भी हमारे सामने आता है। मसलन जब हम उथले या कम गहरे पानी में चल रहे हों तो हमारे पांव पानी की सतह से हकीकी मुसाफत के मुकाबले में ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। इसका सबब भी रोशनी के जाविये की तब्दीली है। रोशनी पानी के माहौल से निकलकर हवा में दाखिले के वक्त जाविया तब्दील करती है और इस तब्दीली के बाइस पानी एक मुहद्दब अदसे की तरह हमारे पांव के मंजर को सतह आप से ज्यादा करीब दिखाना शुरू कर देता है। ये आम सा वाकया असल में बसरी साइंस और इंजीनियरिंग में नहायत अहम मुकाम रखता है। आंखें, कैमरे और माइक्रोस्कोप जैसे मुतद्दद ऑप्टिक आलात इनआताफ के इसी उसूल पर बने हैं। इसके अलावा फितरी माहौल में बहुत से हैवानात इनआताफ के उसूल से इस्तेफादा करके शिकार करते या खतरे से दूर भागते हैं। समिन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी मेज़बान मिसबाह शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: क्योंकि